0: धोनी के क्या करवा था, जो पवन सिंह ने कर दिया है ना उसी पे रेंगे हो। पावर पावर एजे से शुरू होना एजे से खत्म हुई, पावर तो हर के कहाँ से ले ली।
1: फिर वही जवाब बोल रहा है, दे देगा तुम करना चले जाओ।